उमर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है

0: This is Tune India Radio, and it's time for the news headlines.
1: Good afternoon. This is Rishi on Tune India Radio with your hourly news headlines. DMK, AIADMK alliance discussions heat up as Tamil Nadu's political landscape shifts. TVK Chief Vijay meets Tamil Nadu Governor again amid assembly election preparations. Victorians wake to unexpected snow as ski season approaches in Australia. A royal commission reveals Nest Abdallah's health system is unsafe for Jewish individuals. In world news, Trump claims the Iran-US war will end quickly as tensions rise. That's all for now. Stay tuned for more.
2: क्या आप तैयार हैं अपने अगले बड़े एडवेंचर के लिए? इसकी शुरुआत हो रही है सबसे पहले क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट में। यहाँ देखिए सैकड़ों कैरावैन्स, कैंपर्स और कैंपिंग प्रोडक्ट्स। पाइए एक्सक्लूसिव शो डील्स और अपने अगले सफर के लिए ढेरों आइडियाज। ये पूरे परिवार के लिए मस्ती भरा दिन होगा। टिकट सिर्फ $13 से शुरू और 15 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट, शुरुआत यहां से, मंजिल कहीं भी। क्रैनबर्न रेस कोर्स 8 मई से 10 मई तक, टिकट्स लीजिए caravanshow.com.au पर।
3: tuneindia.com.au playing your music 24/7.
4: नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का कबीर का विचार। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। मतलब, किताबों से ज्ञान नहीं, प्रेम से जीवन बदलता है। सोचिए, क्या हम ज्ञान के पीछे भागते हुए प्रेम को भूल रहे हैं? आप सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो, फिर मिलेंगे।
5: हाय, मैं हूं अनुभव सिन्हा और आप सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो।
6: सलाम नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू येट अनदर सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट फ्रॉम बी हार्ट विद अहिल्या। द जर्नी ऑफ 1,000 miles, दे से, स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप, है ना? बट हाउ डू यू नो विच वे टू स्टेप एंड हाउ हार्ड और लाइटली टू वॉक? द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ एनी जर्नी इज इन द डिस्टेंस, इज जस्ट ट्रस्टिंग दैट फर्स्ट स्टेप। हाउ डू यू नो वेयर टू गो, वेदर टू वॉक जेंटली और बोल्डली कम्स आफ्टर। ये फ्रेज ना, द जर्नी ऑफ 1,000 mile बिगिन्स विद अ सिंगल स्टेप, इट साउंड सिंपल इनफ, नहीं? इवन मोटिवेटिंग, काफी इंस्पायरिंग है ये कि ना चलो चल पड़ो। बट वॉट नो वन एवर टॉक्स अबाउट इज द अनसर्टेनिटी दैट कम्स बिफोर दैट स्टेप। कैसे पता चलता है कि कहाँ से शुरू करें? कैसे पता चलता है कि हम किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं, वो क्या हमारे लिए सही होगा? And perhaps, most importantly, how do you know whether to move पूरी ताकत लगा के या फिर हौले हौले? Because starting is not always about confidence, at least in my case. Sometimes it's about listening to myself in the middle of all that uncertainty. You know, I get all pepped up by people talking about like traveling, this, that, and everything. I've had this happen to me before. Got so inspired that I set out, and I probably did not do my research enough that I actually regret that particular journey. And I'm talking about a physical journey, you know, going to a different country, just because I was super inspired. Anyway, I'm talking about life in general and not reaching a destination or going away on a holiday. But that uncertainty that was there, that was kind of telling me to pull back and tell myself, I was telling myself, I'm not fully prepared for this. I'm doing this by myself in a strange country. I'm not prepared for this. But somehow I was so inspired by all these podcasts you listen to and all these shows that you watch, and you are like, main kar sakti hoon. Yes, sometimes had everything gone all right with me, had I not fallen sick and this and that, had I not lost my luggage and all of that, I would have been fine. But because a few things happened to me, I just thought to myself, I should have listened to that voice in my head. Life aise dekha jaye, main jab jis journey ki baat kar rahi hoon, I'm talking about life. The example that I gave you was a small example about a leaf from my book, or a page from my book, you could say, book of life. एनीवे लाइफ इज फुल ऑफ बिगनिंग्स एनीवेज, है ना। स्टार्टिंग अ रिलेशनशिप हो सकता है, या आपका करियर चेंज हो सकता है, या आपने किसी तरीके का लॉस एक्सपीरियंस किया हुआ है जिसके बाद आप हील कर रहे हो। यू नो अ लॉस ऑफ अ पर्सन इन योर लाइफ वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर हीलिंग फ्रॉम दैट लॉस। और आपने जी जान लगा के कुछ स्टार्ट किया था, एक प्रोजेक्ट हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, जो मर्जी, और वो उस हद तक सक्सेसफुल नहीं हुआ जिस हद तक आपने उसको इन्विसाज किया था, जिस हद तक आपने सोचा था। और इट सिंपली कुड बी अबाउट चूजिंग टू बिकम अ बेटर वर्जन, अ डिफरेंट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। यू नो लॉन्गर वॉन्ट टू बी ये यू नो लाइक द वे यू आर एंड यू वॉन्ट टू डू और यू वॉन्ट टू बिकम the self that you always wanted to be and admired in others. You wanted that those qualities and you set out on a path to acquire those qualities and be the best version of yourself. ये भी हो सकता है। जो मर्जी बोलो, नए नए बिगनिंग्स जो होते हैं ना दोस्तों, वो बहुत बार मर्की यानी नॉट क्लियर होते हैं। एंड एज ह्यूमन बींग्स वी वॉन्ट सर्टेनिटी बिफोर, वी वॉन्ट टू बी सर्टन बिफोर we make any kind of a move. We want guarantees even before the risk appears on the horizon. Hai na? That's why insurance is such a popular product. Anyway, life, jab hoti hai na, it rarely comes with a GPS or it rarely offers you maps. It offers intuition, it'll offer you experience and like little bursts of courage, but not maps. तो मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, दैट इज़ कि कैसे पता चलता है कि जो स्टेप ले रहे हैं वो सही दिशा में ले रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परफेक्शन हियर, जस्ट बीइंग अवेयर कि जो भी स्टेप ले रहे हैं वो सही स्टेप है या नहीं। तो इसी बात को आज एक्सप्लोर करेंगे। और ये मुझे किसी मूवी से या कहीं और से नहीं आया, ये मैं खुद से ही सोच रही थी बिकॉज आई वॉज वॉचिंग अ व्लॉग ऑन दिस कपल दैट आई फॉलो एंड दे हैड गॉन टू थाईलैंड एंड दे वर लाइक यू नो प्रोक्रेस्टिनेटिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स एंड देन दे वेंट इन एंड आउट ऑफ देयर यू नो जर्नल ऑफ मेमरीज वेयर दे सेड ओह वी डिड दिस इन जापान, वी डिड दैट इन वियतनाम एंड ऑल ऑफ दैट। एंड I was like, hello, I want to do all of this. And my husband said, after I said that to him, he said, yeah, but you have to like, you know, have the courage to do it. And the first step is to do proper research. If you're going to do it by yourself, chalo, family ke saath ja rahi hu to no problem. But if you're doing it by yourself, then research is your first step. And that brought me into that thing ke, haan yaar, life ki tarah hai na, everything requires research hai na, but phir bhi uncertainty to hai.

And you're back on Straight from the Heart with Ahilya, and we are talking about move lightly when you're exploring that journey of 1,000 steps. अगर आप किसी मूव से या किसी चीज़ से दैट इज़ गोइंग टू टेक यू अवे फ्रॉम एवरीथिंग दैट्स फेमिलियर, इस चीज़ से डरते हो ना, या एक ही वो चीज़ है दैट स्टॉपिंग यू फ्रॉम क्या बोलते हैं, हाउ डू आई पुट दिस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फ्रेम इट प्रॉपरली, देर आर मोमेंट्स व्हेन यू ऑलरेडी नो द डायरेक्शन बट आपको डर है कि आई डोंट नो, मुझे पता है कि मुझे ये नहीं वो करना है पर मुझे पता नहीं क्या होगा. यू नो दैट फियर इट डीलेस मोमेंट. समन लाइक मी विल ओवर थिंक थिंग्स, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग्स, और आई जस्ट स्पीक टू माई पेरेंट्स एंड और माई ब्रदर और माई सिस्टर इन लॉ, माई सिस्टर और माई ब्रदर इन लॉ और माई हस्बैंड. आई विल सीक रीअश्योरेंस फ्रॉम हूएवर इज विलिंग टू लिसन टू मी. तो वैसे ही ना, इफ़ यू ओवर थिंक, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग, सीक रीअश्योरेंस मेरी तरह, देन सर्टन जर्नीज यू नो दे रिक्वायर करेज मोर देन क्लैरिटी, है ना. हेजिटेशन कभी कभी विजडम होता है जब आप हेजिटेट करते हो, बट समटाइम्स इट्स जस्ट आपका डर दैट्स डिस्गाइज्ड एज कॉशन, और आप सोचते हो नहीं आई एम बीइंग कॉशियस. एक कहानी बताती हूँ आपको, देयर इज एन ओल्ड स्टोरी राइट, आपने सुनी होगी और मैंने इससे पहले भी बताई है, अबाउट अ यंग ट्रैवलर स्टैंडिंग बिफोर अ नैरो ब्रिज. एक डीप रिवर है, उसके ऊपर एक ब्रिज है, वो बहुत नैरो है, और वो इतना लाइक वो देखता है और वो डर जाता है. इंडिया में बहुत सारी जगहों पे, हिमाचल में विच इज़ माय हस्बैंड कम्स फ्रॉम, देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस वेयर देयर आर दिस टाइनी टाइनी ब्रिजेस एंड दे आर ओवर अ चैज्म, दे आर ओवर वैलीज एंड दे आर ओवर रिवर्स, डीप रिवर्स, एंड डर लगता है. मे बी ही वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ वन सच ब्रिज एंड ही हेजिटेटेड फॉर आवर्स अफ्रेड दैट द ब्रिज वुड कोलैप्स एंड नॉट टेक हिज वेट. और यू नो जो बड़े बूढ़े बैठे रहते हैं ब्रिज के किनारे या रिवर के किनारे, वैसे ही कोई देख रहा था उसको, एंड ही सेड कि द ब्रिज ओनली बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन यू प्लेस योर वेट ऑन इट. समझ में आया, तभी स्ट्रांग होगा, उतना ही स्ट्रांग होगा जितना जब आप उस पर अपना वजन डालोगे. द ट्रैवलर इवेंचुअली क्रॉस्ड एंड रियलाइज दैट द ब्रिज वॉज स्टेबल ऑल अलॉन्ग. समटाइम्स द पाथ becomes clear only after you have committed to like you know crossing that bridge or crossing that path. उससे पहले आप पता नहीं हज़ार चीज़ें सोचते रहते हो कि ये होगा तो वो होगा तो जो है अभी वो अच्छा है, बाद में पता नहीं क्या होगा. Everyone knows who Rosa Parks is. So I will tell you कि history में एक कहानी है उनके बारे में. She was not the first person, you know Rosa Parks, the black lady, for the want of a better word, the African American lady who was sitting in a bus. The bus driver was white, the people around were white, and she was sitting in the bus, and then a white person entered, and the driver said to her to get up and give up her seat for this person. But she was fed up with this kind of behavior towards the black Americans. So she said no. Now imagine that moment. 100% were comfortable nahi hua hoga. It definitely was not safe because you could get killed for being like that, for rebelling against the system. And usko koi guarantee nahi thi ki usko, you know, kuch hoga nahi. She could have waited for a better time when there were more black Americans sitting around or things like that, or if she had someone else to make sure that she was safe, she could have waited for a safer moment or someone else to act first, because sabhi sochte the, sabhi iske bare mein baat karte the, par karta koi nahi tha. Sometimes the right step is clear and the only thing that's standing in your way is that fear, ke what if. Uska decision sirf personal nahi tha, but it became such an important point, you could say it became a turning point for such a larger movement. Yeah, फिर another movie, one of my other favorites, Rocky, part one, that is. Rocky isn't the strongest or the most, Rocky Balboa, Sylvester Stallone, he isn't the strongest or the most skilled boxer, is he? When he's given a chance to fight, everything around him suggests that he will fail. But wo ring mein step anyway, he goes into the ring, not because he's certain of victory, but because he refuses to let that fear decide his next step in life.
दोस्तों, बोल्ड स्टेप्स डोंट ऑलवेज गारंटी सक्सेस, बट दे डू गारंटी दैट यू विल ग्रो आफ्टर यू टेक दैट स्टेप. एंड समटाइम्स द बिगेस्ट मिस्टेक इज इन चूजिंग द रॉन्ग पाथ. इट इज बिकॉज ऑफ योर फियर नॉट चूजिंग एनीथिंग एट ऑल. स्टेइंग वेर यू आर इज द वर्स्ट थिंग यू कुड डू व्हेन इट्स नॉट अलाइंड विथ हु यू आर.

You're back on Straight from the Heart with Ahilya, and we are today discussing how the journey of a thousand miles begins with the first step. The pace matters as much as the direction. A Chinese folklore hai, there is a story about a bamboo tree. For years after planting, nothing appears above the ground. You know, farmers, generally bamboo trees ka yahi funda hai. Wo sprouting mein itna waqt le lete hain. You know, the farmer waters it daily and there's no visible result. Can you imagine? Someone like me will be filled with so much doubt, frustration even, and the temptation is so big, not just to give up, because you don't know kuch ho raha hai ki nahi, koi moment hi nahi dikh raha hai. But deep under the ground, na, the roots are growing deep and strong, and suddenly after years of invisible growth, the bamboo shoots up rapidly. और इतना फास्ट शूटअप होता है ना, वो लाइक कहावत भी है ना, अरे इतना लंबा हो गया, इज़ लाइक अ बैम्बू स्टिक. तो मस्ट हैव कम फ्रॉम देयर, बिकॉज वंस इट्स स्प्राउट्स, इट जस्ट शूट्स अप वेरी रैपिडली शॉर्ट टाइम में. सो इस स्टोरी या इस कहावत या वॉट एवर यू कॉल इट, दिस एग्जाम्पल का मीनिंग ये है, जस्ट बिकॉज यू डोंट सी प्रोग्रेस डजंट मीन नथिंग इज हैपनिंग. Some journeys are just not meant to be rushed. If you all remember the movie Karate Kid, usme jo bachcha hai, I don't remember his name, he's eager to learn karate, but he wants to do it quickly. He expects action and intensity and visible progress so that he can go and teach the bullies a lesson. But instead, uska teacher, na, Mr. Miyagi, if you all remember, Mr. Miyagi, uska naam Mr. Miyagi tha na? I think it was Mr. Miyagi. Anyway, his teacher makes him repeat the same exercise over and over again. Simple, seemingly unrelated even. Like waxing the car, painting fences, doing his gardening. Sab pointless cheeze karne ko bolte hain. And this boy, the hero, sorry, I don't remember his name, the karate kid. Anyway, he feels everything is pointless that he's doing. It's pointless, it's slow, frustrating. But then वो repetitive actions and everything starts building muscle memory, जो कि कितना important है. आजकल बहुत सुनती हूँ मैं muscle memory, जितना मैं सुनती हूँ mental health के बारे में and how to preserve it, उसको जान से भी ज़्यादा उसको you know उसको क्या कहते हैं संभाल के रखने की बातें होती है आजकल. mental health is everything, वैसे ही muscle memory भी बहुत सुन रही हूँ. इट्स ऑल अबाउट लाइक डेवलपिंग डिसिप्लिन एंड स्किल, आई एम थिंकिंग दैट्स व्हाट मसल मेमोरी इज. एनीवे, सो दोज रिपीटेटिव एक्शंस हेल्प्स हिम बिल्ड मसल मेमोरी, एंड द स्लो पेस दैट ही थॉट वाज डिलेइंग हिज स्किल्स और डिलेइंग हिज ग्रोथ वाज एक्चुअली शेपिंग इट. क्योंकि ज़िंदगी कभी कभी आपको हौले हौले चलने को बोलती है, नॉट टू होल्ड यू बैक बट टू how can you say this? Prepare you properly for what is to come. Because in life you can never tell, right? Unless you're prepared, you will not, you know, be able to like deal with what comes. Life isn't only about movement, it's about timing. Some journeys will require you to run, others will require you to walk gently. Stepping lightly is not weakness, it's preparation. So not preparation, because not everything is to be rushed, yaar. Healing requires gentleness. Growth requires patience. Ambition may require intensity. Wisdom lies in knowing कि आप किस emotional state में हो, कौन सी emotional energy आप को is talking loudest to you before deciding your pace. How hard or lightly your step depends on what season of life you're in, what emotional energy is actually coming out of you at that particular point of time in your life. The first step rarely feels certain, but aapko ek direction mil jati hai. Clarity comes after movement, not before. Warna us bridge pe जाऊं के नहीं उसी में उसने इतना वक्त गुजार दिया कि उस बुजुर्ग को बोलना पड़ा कि भाई अपना वेट डाल उस ब्रिज पे और देख. पीपल वेट फॉर सर्टेनिटी बिकॉज दे फियर कि गलत किया तो, गलती हुई तो, स्पेशली पीपल हु कम फ्रॉम आर साइड ऑफ द वर्ल्ड, दे फियर मिस्टेक्स. आई थिंक इट्स अ हैंगओवर फ्रॉम कॉलोनियल डेज, आई डोंट नो. हमारे डीएनए में ना डर है कि हम गलतियाँ करेंगे तो
हम पे लाइक लोग हंसेंगे तो सबको पता चलेगा कि मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रहा हूँ, तो वॉट एनी वे, दैट्स अ गुड टॉपिक एंड आई शुड टॉक अबाउट दैट एज वेल, बट सम अदर डे. वॉट वॉज आई टॉकिंग अबाउट? या जर्नी ऑफ 1,000 स्टेप्स. सो मोस्ट मीनिंगफुल जर्नीज आर शेप्ड नॉट वाइल स्टैंडिंग स्टिल बट वेन यू स्टार्ट वॉकिंग, बिकॉज एक्शन क्रिएट्स फीडबैक. एक्सपीरियंस, जब आप एक स्टेप लेते हो दूसरा स्टेप लेते हो, आपका मसल मेमोरी में वो एक्सपीरियंस बच जाता है, एंड दैट दैट पर्टिकुलर थिंग इट्सेल्फ, द एक्सपीरियंस इट्सेल्फ विल स्लोली गिव यू द फ्रीडम. द फर्स्ट स्टेप डजंट नीड टू गारंटी द एंडिंग, इट ओनली नीड्स टू बिगिन योर स्टोरी. सो हाउ डू यू नो विच वे टू स्टेप एंड हाउ हार्ड और लाइटली टू मूव? द आंसर इज सिंपलर देन वी थिंक. इतना सब कुछ बोल दिया मैंने, सच में आंसर बहुत सिंपल है. स्टेप टूवर्ड्स वॉट फील्स राइट फॉर यू, बिकॉज योर राइट कुड बी अ रॉन्ग फॉर समवन एल्स, बट इफ इट फील्स राइट टू यू देन इट्स ऑनेस्ट, इट्स योर ट्रूथ. मूव लाइटली वेन यू आर लर्निंग, मूव बोल्डली वेन फियर इज द ओनली बैरियर. और अपने आप को, अपने पेस को ट्रस्ट करो. क्लैरिटी रेयरली कम्स बिफोर मोमेंट, फिर हमको डाउट्स, गैस लाइटिंग और सब कुछ चालू रहता है. इट ओनली कम्स आफ्टर यू मेक मोमेंट. इनफैक्ट इट कम्स थ्रू मोमेंट, बिकॉज द जर्नी ऑफ 1,000 miles इजंट बिल्ड फ्रॉम सर्टेनिटी, इट्स जस्ट बिल्ड बाय टेकिंग वन स्टेप एंड फॉलोइंग इट अप बाय अनदर. तो सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ माई पॉडकास्ट. I have really enjoyed today's talk. Some things have become clearer in my head as well. My muscle memory is also performing at a rapid pace. But mera time yahi tak ka tha. I'll come back to you very soon with a new topic. Till then, you know what to do with yourselves. Take very good care, of course. Take very good care of yourselves. Keep listening to Tune India Radio. And I'll be back some other day. Bye for today. Tune India Radio.

0: This is Tune India Radio, and it's time for the news headlines.
1: Good afternoon. This is Rishi on Tune India Radio with your hourly news headlines. DMK, AIADMK alliance discussions heat up as Tamil Nadu's political landscape shifts. TVK Chief Vijay meets Tamil Nadu Governor again amid assembly election preparations. Victorians wake to unexpected snow as ski season approaches in Australia. A royal commission reveals Nest Abdallah's health system is unsafe for Jewish individuals. In world news, Trump claims the Iran-US war will end quickly as tensions rise. That's all for now. Stay tuned for more.
2: क्या आप तैयार हैं अपने अगले बड़े एडवेंचर के लिए? इसकी शुरुआत हो रही है सबसे पहले क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट में। यहाँ देखिए सैकड़ों कैरावैन्स, कैंपर्स और कैंपिंग प्रोडक्ट्स। पाइए एक्सक्लूसिव शो डील्स और अपने अगले सफर के लिए ढेरों आइडियाज। ये पूरे परिवार के लिए मस्ती भरा दिन होगा। टिकट सिर्फ $13 से शुरू और 15 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट, शुरुआत यहां से, मंजिल कहीं भी। क्रैनबर्न रेस कोर्स 8 मई से 10 मई तक। टिकट्स लीजिए caravanshow.com.au पर।
3: आपका पसंदीदा संगीत स्टेशन।
4: नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का रहीम का विचार। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांट पर जाए। मतलब प्रेम का रिश्ता नाजुक होता है, एक बार टूटे तो पहले जैसा नहीं रहता। सोचिए, क्या हम रिश्तों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं? आप सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो, फिर मिलेंगे।
5: हेलो ऑस्ट्रेलिया, आई एम रानी मुखर्जी एंड कीप लिसनिंग ट्यून इंडिया रेडियो,
6: ब्रॉडकास्टिंग वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन 24/7।

0: This is Tune India Radio, and it's time for the news headlines.
1: Good afternoon. This is Rishi on Tune India Radio with your hourly news headlines. DMK, AIADMK alliance discussions heat up as Tamil Nadu's political landscape shifts. TVK Chief Vijay meets Tamil Nadu Governor again amid assembly election preparations. Victorians wake to unexpected snow as ski season approaches in Australia. A royal commission reveals Nest Abdallah's health system is unsafe for Jewish individuals. In world news, Trump claims the Iran-US war will end quickly as tensions rise. That's all for now. Stay tuned for more.
2: क्या आप तैयार हैं अपने अगले बड़े एडवेंचर के लिए? इसकी शुरुआत हो रही है सबसे पहले क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट में। यहाँ देखिए सैकड़ों कैरावैन्स, कैंपर्स और कैंपिंग प्रोडक्ट्स। पाइए एक्सक्लूसिव शो डील्स और अपने अगले सफर के लिए ढेरों आइडियाज। ये पूरे परिवार के लिए मस्ती भरा दिन होगा। टिकट सिर्फ $13 से शुरू और 15 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट, शुरुआत यहां से, मंजिल कहीं भी। क्रैनबर्न रेस कोर्स 8 मई से 10 मई तक। टिकट्स लीजिए caravanshow.com.
3: Keeping you company throughout the day.
4: Tune India Radio.
5: नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का विचार। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मतलब अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो वो हर जगह के न्याय के लिए खतरा है। सोचिए, क्या हम चुप रहकर अन्याय को सहारा दे रहे हैं? आप सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो। फिर मिले।
6: हाय, दिस इज आयुष्मान खुराना एंड यू आर लिसनिंग टू ट्यून इंडिया रेडियो।
7: Biggest hit frequency today. RadioTuneIndia.com.au.
8: आपके पसंदीदा गानों के साथ

0: हाय बहू, आज भी जानता है आपसे मिल रहे हैं इंडिया रेडियो के सुनते हैं।
1: पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा।

0: क्या बनाया है।
1: लड़का सुंदर और सुशील किस्मतों से पाया है।
2: अच्छा खासा लड़का देखो मैडम ने कैसे भजाया है।

0: 24/7।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: This is Tune India Radio, and it's time for the news headlines.
1: Good evening. This is Rishi on Tune India Radio with your hourly news headlines. Tamil Nadu governor informs TVK chief that requisite majority support not established. Operation Sindoor unfolds with a series of missile strikes and a ceasefire call. Islamic State-linked families have arrived in Australia from Syria. Western Australia reports another bumper surplus in its budget. Iran is expected to respond to the US proposal for ending the war this Thursday. That's all for now. Stay tuned for more.
2: क्या आप तैयार हैं अपने अगले बड़े एडवेंचर के लिए? इसकी शुरुआत हो रही है सबसे पहले क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट में। यहाँ देखिए सैकड़ों कैरावैन्स, कैंपर्स और कैंपिंग प्रोडक्ट्स। पाइए एक्सक्लूसिव शो डील्स और अपने अगले सफर के लिए ढेरों आइडियाज। ये पूरे परिवार के लिए मस्ती भरा दिन होगा। टिकट सिर्फ $13 से शुरू और 15 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट, शुरुआत यहां से, मंजिल कहीं भी। क्रैनबर्न रेस कोर्स 8 मई से 10 मई तक। टिकट्स लीजिए caravanshow.com.au पर।
3: नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का कबीर का विचार। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। मतलब एक सच्चे संत की तरह बनिए, जो अच्छे को रखे और बुरे को छोड़ दे। सोचिए, क्या हम हर बात में सार खोजते हैं या दिखावे में उलझे हैं? आप सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो, फिर मिलेंगे।
4: हेलो एवरीवन, दिस इज पायल राजपूत और आप सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो।
5: सलाम नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू येट अनदर सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट विद अहिल्या। द जर्नी ऑफ 1,000 miles, दे से, स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप, है ना? बट हाउ डू यू नो विच वे टू स्टेप and how hard or lightly to walk? The hardest part of any journey, isn't the distance. It's just trusting that first step. How do you know where to go, whether to walk gently or boldly comes after? Ye phrase, na, the journey of 1,000 miles begins with a single step. It sounds simple enough, ne? Even motivating. Kafi inspiring hai ye, ke na, chalo, chal padho. But what no one ever talks about is the uncertainty that comes before that step. कैसे पता चलता है कि कहाँ से शुरू करें? कैसे पता चलता है कि हम किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं, वो क्या हमारे लिए सही होगा? And perhaps, most importantly, how do you know whether to move पूरी ताकत लगा के या फिर हौले हौले? Because starting is not always about confidence, at least in my case. Sometimes it's about listening to myself in the middle of all that uncertainty. You know, I get all pepped up by people talking about like traveling, this, that and everything. I've had this happen to me before, got so inspired that I set out and I probably did not do my research enough that I actually regret that particular journey. And I'm talking about a physical journey. You know, going to a different country just because I was super inspired. Anyway, I'm talking about life in general and not reaching a destination or going away on a holiday. But that uncertainty that was there, that was kind of telling me to pull back and I was telling myself, I'm not fully prepared for this. I'm doing this by myself in a strange country. I'm not prepared for this. But somehow I was so inspired by all these podcasts you listen to and all these shows that you watch. And you are like, main kar sakti hoon. Yes, sometimes had everything gone all right with me, had I not fallen sick and this and that, had I not lost my luggage and all of that, I would have been fine. But because a few things happened to me, I just thought to myself, I should have listened to that voice in my head. Life aise dekha jaye, main jab jis journey ki baat kar rahi hu na, I'm talking about life. The example that I gave you was a small example about a leaf from my book. Or a page from my book, you could say, book of life. Anyway, life is full of beginnings. Anyways, hai na? Starting a relationship ho sakta hai, ya aapka career change ho sakta hai, ya aapne kisi tarike ka loss experience kiya hua hai, jiske baad aap heal kar rahe ho. You know, a loss of a person in your life was very important and you are healing from that loss. और आपने जी जान लगा के कुछ स्टार्ट किया था, एक प्रोजेक्ट हो सकता है, बिजनेस हो सकता है जो मर्जी, और वो उस हद तक सक्सेसफुल नहीं हुआ जिस हद तक आपने उसको इन्विसाज किया था, जिस हद तक आपने सोचा था. और इट सिंपली कुड बी अबाउट चूजिंग टू बिकम अ बेटर वर्जन, अ डिफरेंट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. यू नो लॉन्गर वॉन्ट टू बी ये यू नो लाइक द वे यू आर एंड यू वॉन्ट टू डू और यू वॉन्ट टू बिकम द सेल्फ दैट यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एंड एडमायर्ड इन अदर्स. यू वॉन्टेड दैट दोज क्वालिटीज एंड यू सेट आउट ऑन अ पाथ टू एक्वायर दोज क्वालिटीज एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. ये भी हो सकता है. जो मर्जी बोलो, नए नए बिगनिंग्स जो होते हैं ना दोस्तों, वो बहुत बार मर्की यानी नॉट क्लियर होते हैं. एंड एज ह्यूमन बींग्स वी वॉन्ट सर्टेनिटी बिफोर, वी वॉन्ट टू बी सर्टन बिफोर वी मेक एनी काइंड ऑफ अ मूव. वी वॉन्ट गारंटीज इवन बिफोर द रिस्क अपीयर्स ऑन द होराइजन, है ना. दैट्स वाई इंश्योरेंस इज सच अ पॉपुलर प्रोडक्ट. एनी वे, लाइफ जब होती है ना, इट रेयरली कम्स विद अ GPS और इट रेयरली ऑफर्स यू मैप्स. इट ऑफर्स इंट्यूशन, इट विल ऑफर यू एक्सपीरियंस एंड लाइक लिटिल बर्स्ट्स ऑफ करेज, बट नॉट मैप्स. तो मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, दैट इज कि कैसे पता चलता है कि जो स्टेप ले रहे हैं वो सही दिशा में ले रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परफेक्शन हियर, जस्ट बीइंग अवेयर कि जो भी स्टेप ले रहे हैं वो सही स्टेप है या नहीं. तो इसी बात को आज एक्सप्लोर करेंगे. और ये मुझे किसी मूवी से या कहीं और से नहीं आया, ये मैं खुद से ही सोच रही थी बिकॉज आई वॉज वॉचिंग अ व्लॉग ऑन दिस कपल दैट आई फॉलो एंड दे हैड गॉन टू थाईलैंड एंड दे वर लाइक यू नो प्रोक्रेस्टिनेटिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स एंड देन दे वेंट इन एंड आउट ऑफ देयर यू नो जर्नल ऑफ मेमरीज वे दे सेड ओह वी डिड दिस इन जापान, वी डिड दैट इन वियतनाम एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आई वॉज लाइक हेलो, आई वॉन्ट टू डू ऑल ऑफ दिस. एंड माई हस्बैंड सेड आफ्टर आई सेड दैट टू मी, सेड या बट यू हैव टू लाइक यू नो हैव द करेज टू डू इट एंड द फर्स्ट स्टेप इज टू डू प्रॉपर रिसर्च इफ यू आर गोइंग टू डू इट बाय योरसेल्फ. चलो फैमिली के साथ जा रही हो तो नो प्रॉब्लम, बट इफ यू आर डूइंग इट बाय योरसेल्फ देन रिसर्च इज़ योर फर्स्ट स्टेप. एंड दैट ब्रॉट मी इनटू दैट थिंग कि हाँ यार, लाइफ की तरह ही ना, एवरीथिंग रिक्वायर्स रिसर्च, है ना. बट फिर भी अनसर्टेनिटी तो है.

इस टाइम हाँ इस टाइम दैट्स राइट इस टाइम इंस्टेड ऑफ प्रेशर टू यू नो टू लेट द वर्ल्ड नो डोंट बी इन अ रश टू लेट द वर्ल्ड नो हाउ स्किलफुल यू आर क्यूरियोसिटी लाओ अपने यू नो मैनरिज्म्स में या अपने दिमाग में बी क्यूरियस ट्रीट एवरी स्ट्रोक एज इफ इट्स एन एक्सप्लोरेशन यू एक्सप्लोरिंग समथिंग इट्स नॉट अ परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली ओवर टाइम हिज वर्क ट्रांसफॉर्म नॉट बिकॉज ही फोर्स्ड मास्टरी बट बिकॉज ही अलाउड हिमसेल्फ टू लर्न लाइटली धीरे धीरे

And you're back on Straight from the Heart with Ahilya, and we are talking about move lightly when you're exploring that journey of 1,000 steps. अगर आप किसी मूव से या किसी चीज़ से दैट इज़ गोइंग टू टेक यू अवे फ्रॉम एवरीथिंग दैट्स फेमिलियर, इस चीज़ से डरते हो ना, या एक ही वो चीज़ है दैट स्टॉपिंग यू फ्रॉम क्या बोलते हैं, हाउ डू आई पुट दिस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फ्रेम इट प्रॉपरली, देर आर मोमेंट्स व्हेन यू ऑलरेडी नो द डायरेक्शन, बट आपको डर है कि आई डोंट नो, मुझे पता है कि मुझे ये नहीं वो करना है, पर मुझे पता नहीं क्या होगा. यू नो दैट फियर ए डीलेस मोमेंट. समवन लाइक मी विल ओवर थिंक थिंग्स, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग्स, और आई विल जस्ट स्पीक टू माई पेरेंट्स एंड और माई ब्रदर और माई सिस्टर इन लॉ, माई सिस्टर और माई ब्रदर इन लॉ और माई हस्बैंड. आई विल सीक रीअश्योरेंस फ्रॉम हूएवर इज़ विलिंग टू लिसन टू मी. तो वैसे ही ना, इफ़ यू ओवर थिंक, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग, सीक रीअश्योरेंस मेरी तरह, देन सर्टन जर्नीज यू नो दे रिक्वायर करेज मोर देन क्लैरिटी, है ना. हेजिटेशन कभी कभी विजडम होता है जब आप हेजिटेट करते हो, बट समटाइम्स इट्स जस्ट आपका डर दैट्स डिस्गाइज्ड एज कॉशन, और आप सोचते हो नहीं, आई एम बीइंग कॉशियस. एक कहानी बताती हूँ आपको. देयर इज एन ओल्ड स्टोरी, राइट, आपने सुनी होगी और मैंने इससे पहले भी बताई है, अबाउट अ यंग ट्रैवलर स्टैंडिंग बिफोर अ नैरो ब्रिज. एक डीप रिवर है, उसके ऊपर एक ब्रिज है, वो बहुत नैरो है, और वो इतना लाइक वो देखता है और वो डर जाता है. इंडिया में बहुत सारी जगहों पे, हिमाचल में विच इज माय हस्बैंड कम्स फ्रॉम, देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस वेयर देयर आर दीस टाइनी टाइनी ब्रिजेस एंड दे आर ओवर अ चैस्म, दे आर ओवर वैलीज एंड दे आर ओवर रिवर्स, डीप रिवर्स, एंड डर लगता है. मे बी ही वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ वन सच ब्रिज एंड ही हेजिटेटेड फॉर आवर्स, अफ्रेड दैट द ब्रिज वुड कोलैप्स एंड नॉट टेक हिज वेट. और बिना जो बड़े बूढ़े बैठे रहते हैं ब्रिज के किनारे या रिवर के किनारे, वैसे ही कोई देख रहा था उसको, एंड ही सेड कि द ब्रिज ओनली बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन यू प्लेस योर वेट ऑन इट. समझ में आया? तभी स्ट्रांग होगा, उतना ही स्ट्रांग होगा जितना जब आप उस पर अपना वजन डालोगे. द ट्रैवलर इवेंचुअली क्रॉस्ड एंड रियलाइज दैट द ब्रिज वॉज स्टेबल ऑल अलॉन्ग. समटाइम्स द पाथ becomes clear only after you have committed to, like, you know, crossing that bridge or crossing that path. उससे पहले आप पता नहीं हज़ार चीज़ें सोचते रहते हो कि ये होगा तो वो होगा तो जो है अभी वो अच्छा है, बाद में पता नहीं क्या होगा. Everyone knows who Rosa Parks is. So I will tell you कि history में एक कहानी है उनके बारे में. She was not the first person, you know, Rosa Parks, the black lady, for the want of a better word, the African American lady who was sitting in a bus. The bus driver was white, the people around were white, and she was sitting in the bus, and then a white person entered, and the driver said to her to get up and give up her seat for this person. But she was fed up with this kind of behavior towards the black Americans. So she said no. Now imagine that moment. 100% were comfortable nahi hua hoga. It definitely was not safe because you could get killed for being like that, for rebelling against the system. And usko koi guarantee nahi thi ki usko, you know, kuch hoga nahi. She could have waited for a better time when there were more black Americans sitting around or things like that, or if she had someone else to make sure that she was safe, she could have waited for a safer moment or someone else to act first, because sabhi sochte the, sabhi iske bare mein baat karte the, par karta koi nahi tha. Sometimes the right step is clear and the only thing that's standing in your way is that fear, ke what if. Uska decision sirf personal nahi tha, but it became such an important point, you could say it became a turning point for such a larger moment. Yeah, fir another movie, one of my other favorites, Rocky, part one, that is. Rocky isn't the strongest or the most, Rocky Balboa, Sylvester Stallone, he isn't the strongest or the most skilled boxer, is he? When he's given a chance to fight, everything around him suggests that he will fail. But wo ring mein step anyway, he goes into the ring, not because he's certain of victory, but because he refuses to let that fear decide his next step in life.
दोस्तों, बोल्ड स्टेप्स डोंट ऑलवेज गारंटी सक्सेस, बट दे डू गारंटी दैट यू विल ग्रो आफ्टर यू टेक दैट स्टेप. एंड समटाइम्स द बिगेस्ट मिस्टेक इज इन चूजिंग द रॉन्ग पाथ. इट इज बिकॉज ऑफ योर फियर नॉट चूजिंग एनीथिंग एट ऑल. स्टेइंग वेर यू आर इज द वर्स्ट थिंग यू कुड डू व्हेन इट्स नॉट अलाइंड विथ हु यू आर.

0: क्या करता मैं, कब तक भूखा मरता मैं, भगवान का बात मत कर, गरीब हूँ नहीं डरता मैं।
1: क्रेजी दिया तूने ये क्या किया, काली पोकट गीजी ने नो दे दिया।
2: इक्वस अफ्रीकानस असिनस, मतलब कथा, कथे के जैसा मक्का।